0: खोलो ग्रंथ ते ग्रंथ खोल के की करो लेओ आवाज जिन्हों आप जी मुख वात हुक्मनामा कहिंदे उस वच कहिंदे सन आवाज आवाजा देना कहन लगे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेओ आवाज सुने सा पंथ अदब सांझ तब ग्रंथ सो खोला अदब नाल बद्दा चटी नहीं खिच के रुमाले इधर सत्ते इधर सत्ते भी अपना काम नबेड़िया अदब साहिब तब ग्रंथ सो खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला ते की बोलिया सुही महला पंजवा संता के कार्य आप खलोया हर कम करावन आया राम तरत सुहावी तार सुहावा विच अमृत जाले छाया राम। गुरु के सिखो कभी तको देखो गुरु की बाणी जिथो विचार आरंभ की तीसी फिक्के बोल जे शब्द साडे अंदर नु स्पर्श कर देने असी भुलदे नहीं के इस बंदे ने मैनु ए कह मैं सारी जिंदगी नहीं भुल सकदा जे फिक्के बोल तेरे अंदर नु स्पर्श करके कौड़ियां कर देने ते सुखमणि दे मिठे बोल तेरे अंदर नु ठंड नहीं पाणगे कि गुरु साहब दा जपजी साहब तेरे अंदर नु सुकून नहीं देगा कि आसा की वार तेरे अंदर नु ठंड नहीं पाएगी ते जदो किते बाणी नाल जुड़ेगा ते फिर मेरा गुरु बोल के कहेगा सिखा ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हरनामा जदो बाणी गाएगा आवाज आवेगी कोई गावे को सुने हरनामा चितलाए कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए जदो तू बाणी नु सुनेगा ते सतगुरु बोल के तेनु कहणगे के अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हो वह परम गत मेरी जलन बुझी शीतल कोई मनवा सतगुरु का दर्शन पाए जियो। गुरमुखो 400 साल आ रहे हैं अगले साल भरोसा कोई नहीं सुवास दा भी आस ते जीद है। एक गल चेते रखो जिथे लड़ी शुरू की थी जे बड़ी चंगी गल है गुरबाणी का प्रवाह चलना चाहिए पर एक अर्ज करांगा जे धन गुरु ग्रंथ साहिब नू दिलों प्यार कर दियो ते जेड़े अजे तिकरा बाणी नहीं ना पढ़ दे अगली एक सितंबर नहीं होना नानक शाही कैलेंडर अनुसार पूरा एक साल पै अपनी जबान नाल अपनियां अखां नाल अपने कन्ना नाल एक एक गुरु ग्रंथ साहिब का पूरा सहज पाठ कर लो ते समझांगा 416 साल मनाया होया सफल हो गया। आप भी करो उस दिन अरदास करो अज एक प्रण कर लो दाता साल तक जेडे महीने विच भोग पांदे ने उन्हां दे चरणां नूं नमस्कार जेडे नहीं पाठ करदे हुण तां बड़े तरीके हो गए ने गुरु ग्रंथ साहिब दीआं सीढ़ियां भी मिल जांदियां ने नाल नाल बोलो नाल नाल सुनो ते सवाद तां जे आप भी नाल 400 अखंड पाठ तो बाद इत्थों दा हर एक संगी आप गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करन वाला होवे ते अगले साल नूं उस तो अगो जो पाठ दिवस आवे प्रकाश दिवस उदन संगत खुद पाठ करे धन गुरु ग्रंथ साहिब तां कृपा करनगे। इन्हीं को बेनतियां प्रवान करिया जे सिर्फ संखेप जी मैं अर्ज कीती है वैसे बाणी दे बेअंत पथ ने जिन्हां नूं आपां विचार सकने हैं कल तो जो भाई साहब जी होरां ने भी कह दिता है अरदास जिथे आपां छड के गए सां 40 मुक्तियां तो आरंभ करनी है इन्हीं को बेनतियां प्रवान करिया जे वाहिगुरु जी का वाहिगुरु
1: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपं गुरु प्रसाद

दो दुर गुरु गोबिंद कहन लगे जदो तके कहन लगे थे गम की जगह अंदर गमी नहीं शांति से पुर गुरु गोबिंद उन्हां दे हिरदे विच टिकाए जदो रोपड़ तो बूर माजरे सामने देखे चमकौर नूं ते सिख पुछदे ने भाई दया सिंह ए ऐस पिंड विच आपां जाणा है। हजूर ने मुस्कुरा के एक गल कही कहन लगा दया सिंह मैं कई सालां तो ऐस पिंड दी इंतजार करदा सां कदों घड़ी आवे जदों मैं ऐस पिंड विच प्रवेश करना है। भावां साहिब पहलां भी जा चुके ने हजूर नूं पुछदा भाई दया सिंह ए पिंड नाल कोई खास लगा है इस धरती दे नाल कोई ज्यादा नेव है आनंदपुर नूं छड के आयो ते चमकौर नूं देख के इन्ने खुश क्यों हो। उसे हजूर ने कुछ बचन कहे कहन लगे दया सिंह जी जिस खिते में कहते थे हम आना ये वही है कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है मिट्टी कह देती है तिखाना ये वही है। आज वो धरती आ जिथे मेरे दो पुत्रा ने शहीद होना है ते उस अकाल पुरख का मैं शुक्र करना है इस करके मैं खुश हो रहा। वो धरती तू किन्या भागा वाली है शब्द वरते जिथे मेरे दो पुत्रा ने शहादत दा जाम पीना है। साहब शाम दे वक्त चमकौर साहब पहुंचे ने मैं साहब इस करके उन शब्द वरत रहा क्योंकि मेरा साहब चमकौर पहुंच गया है ते जिस धरती ते मेरा साहब पहुंचदा है वो धरती भी साहब बन जाती है। हजूर चमकौर साहब पहुंचे ने इत्थे कच्ची हवेली का मालक है जिन्हू आपां गढ़ी कहने आ। इस हवेली विच कुछ कमरे ने उपर एक सबारा भी है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज इन्हां दे चरणां विच उस हवेली का मालक बुद्धी राज आया है। जब साहब दे नाल सुखे पाने सिख ने सतगुरु दे दो शहर ज्यादा वड्डे नाल ने कई विद्वान ए भी लिखदे ने कि ओ पहला इनकार कर गया पर नहीं सिख विद्वान कहिंदे ने उस हवेली दे मालक ने चरणा विच ही चक दिता सी दो भरा सन एक मंदा सी दूजा नहीं जेड़ा मंदा सी उस चरणा विच आ के कहिंदा सतगुरु पिता दिता आनंदपुर वार दिता तेरे परिवार के कई टुकड़े हो गए मैं जिस धरती दियां तू गुलामी दियां जंजीरां कटनियां चाहना है उस धरती दे लोग तेनू घर रखने लई तैयार नहीं मैं कुछ नहीं तेनू देखदा हां हवेली तेरे चरणा विच भागा वाली हो गई आ तेरी हवेली विच पशु टिके ने अज तो बाद रहिंदी दुनिया तक सिख हवेली ने इन्ना सुहाण हो जानी जदों भी लोग सिख तेरी गुरु अमर दी शाम टूरिस्ट ते ठंडी पो दी रात हजूर चमकौर गड़ी विच प्रवेश करदे ने उस वक्त अल्लाह यार खां जोगी ने जेड़ा रात दा दृश्य पेश कीता है उस बंदे ने कमाल कर दिती है। कहिंदा चमकौर गड़ी विच प्रवेश कीते दोनों साहिबजादे मेरे हाल ने भाई दया सिंह नाल ने भाई धर्म सिंह नाल ने भाई मान सिंह नाल ने 44 को मैं अर्ज कीती गुदेव दे समेत गिनती है। हजूर गड़ी विच जदों आदा दित्ता है दे भुखिया नूं गुरु का लंगर नसीब होया है किन्ने पानी बन के आ गया ना सिदक वाले सिख ने साहिब दे चरणा विच रख के किन्ने ने दाती पहला लंगर आप छको साहिब जादियां नूं छकाओ बाद विच असीं अपने मुरीदां नूं ने कहन लगा नहीं भाई दया सिंह जी मैं नहीं तुसी मेरे जिंद तो वध प्यारे हो तुसी मेरे सामने बह के भोजन छको तुसी छको मेनू अपने आप ही मिल जाए। सतगुरु ने बाणी च यही तां वचन कीता है साहिब जी कहिंदे ने कि जदों गुरु के सिखा पुत्र खाए मां दा ओ दया सिंह पुत्र खाए मां खुश है मच्छी नूं पानी मिले ओ खुश है ते जदों तुसी अपने मुंह च पाओगे ना ते गुरु गोबिंद सिंह नूं अपने आप ही पहुंच जाना। हजूर ने उसे बाणी दा प्रमाण दिता कहन लगे माता प्रीत करे पुआए मीने प्रीत भई जाए गुरसिख प्रीत कहन लगे सतगुरु गुरसिख मुख बन जाएगा। शाम दे वक्त सोदर रहराज साहिब जी दा अज भी पाठ होया है कोई समा ऐसा नहीं जिदन कलगी वाले नु प्यारा प्रीत भुलिया होवे सोदर दा पाठ होया है ते शाम नु सिखा दी वख वख थावा ते ड्यूटी ला दिती। कुछ विद्वान लिखदे ने हजूर दोनों साहिबजादियां नाल ते भाई दया सिंह नाल भाई संत सिंह नाल उपर वाले चबारे भी चले आए ने थले हवेली दे चार चपेरे सिंह पहरा देन लगे ने कुछ आराम तय करदे ने किन्ने अज सोहणी सेज नहीं घोड़ियां दी काठी 21 दिसंबर दी रात नूं सिखां ने अपने सराहणे बनाया काठियां थले पाण वाले कपड़े जमीन ते विछाले ने कई दिनां दे थके ने अज नींद भी आउंदी पई है कुछ पहरा दे ने कुछ जमीन ते लेट के

सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपहं गुर प्रसाद

नानक होशे ते सच गुरपुरै मेरी राख लई गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई।

आप जी ने बड़े प्यार दे नाल सरवण कीता है। आओ आज जो इस स्थान वल्लों होले महल्ले दा पर्व मनाया जा रहा है, इस दे पिछोकड़ इतिहास और इस त्योहार ने सिखां दे अंदर की नवा जोश भर दिता, इस दी विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा और आप साध संगत दी आशीष नाल होनी है। सतगुरु कृपा करके अंदर दा टिकाओ बख्श, आप ही इस इतिहास और बाणी दी विचार करा लैन। विचार आरंभन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान दी धरती उपर कुछ त्योहार ऐसे मनाए जाते ने जेड़े खास खास रुतां दे नाल संबंधित ने, जिवें कि इन्हां दिनां दे अंदर बसंत नूं भी बड़े लोक चाह मलार दे नाल मनांदे ने, ते बसंत आउण दे नाल जिथे पाला सर्दी घटदी है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी पैंदी है, ते हर पासे चार चुफेरे फुल्लां दी महक फुल खिड़े ने, ते जिमीदारां ने खेतां विच जिथे भी फसल बीजी सरों दी इस तरह मानो जिवें कि पीली चादर ने सारी धरती नूं ढक लिया होवे। इस बसंत दी रुत दे विच ही रुखां नूं पत झड़ तों बाद उस परमेश्वर दी दया नाल नवें पत्तियां दी दात मिलदी है, ते गुरु नानक साहिब जी ने अपनी बाणी विच बड़ा प्यारा बचन किया है। कह लगे बसंत दी रुत विच हर एक मनुख प्रसन्न है, जीव जंतु खुश है, धरती दी बनस्पति मौल गई, पर गुरुदेव कहिंदे ने याद रखी असल विच मनुख लई ओ ही रुत चंगी है, बसंत ओदे लई जिदे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम टिक गया, जिस दे हिरदे विच गुरु की बख्शी हुई बाणी दा निवास हो गया, ते जिस मनुख दे हिरदे विच परमेश्वर गुरु निरंकार दी कृपा नहीं टिकी, ओ बसंत दी रुत विच सारी दुनिया खुश है, ओ बसंत विच भी इसे तरह तुरिया फिरदा है जिवें किसे ने अंदर नूं अग ला दित्ती होवे। सतगुरु ने बचन कीता, कहन लगे नानक तिन्ना बसंत है। गुरु नानक साहिब जी दे बचन ने किन ने बसंत उन्हां लई है जिन घर वसिया कंत, कंत दा अर्थ है मालक पति, जिन्हां दे हिरदे विच घर विच मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु परमेश्वर सतगुरु वस गया, नानक तिन्ना बसंत है। जिन घर वसिया कंत, जिनके कंत दिशा पुरी, ते जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु नहीं से ऐनस फिरै जलंत, ओ दिन रात बसंत दी रुत विच भी सड़दे पए। इसे तरह रुतां नाल संबंधित आ होली दा इक त्योहार है, क्योंकि आपां भावें गल होले महल्ले दी करनी है पर सानू पिछोकड़ विच वचना पएगा होली दा की भाव सी, होला महल्ला क्यों आरंभ होया। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ने आ ते हिंदुस्तान दे इतिहास वल झाती मारने आ, मुद तां पहला हिंदुस्तान दी धरती ते हरनाक्ष दे घर दे अंदर प्रहलाद पैदा होया, ते गुरु ग्रंथ साहिब ने इस बारे बड़े विस्तार नाल वेरवा दिता है, ते भाई गुरदास तां इह बचन करदे ने हे प्रभु असीं सुणिया कि कलरी भोए विच कलरी जमीन विच कदी फसल नहीं पैदा हुंदी, हरनाक्ष वर्गा कलर वाला मन जेड़ा जिहड़ा कलर वर्गा घर है उस दे घर दे अंदर तुसीं प्रहलाद वर्गा कमल दा फुल पैदा कर दिता है।

सदगुरु को भी पाठ कर दिए कुछ प्राप्त करो तो अपने जीवन को सफल बनाए बहुत सारे लोग बाल कार्य को में लड़ी चल रही है जिस करके संस्था हम लोग काफी जोड़ रहे हैं संस्था की लड़ी चल रही है सारी संस्था बड़े ख्याल है बहुत सारे लोग हम सुबह सेवा भी दिखा पा रहे हैं इसमें सारी संस्था का तो संवाद है

एक गोली खा लेना विटामिन दी। प्रोफेसर पूरन सिंह ने देखो उत्तर कैसा दिता, वो कहिंदा मैनू नहीं पता ये विटामिन देंदे ने, ये ताकत देंदे ने। कहिंदे ने एक सुहागण तुरी जांदी है, ओदी मांग विच संदूर पिया है, ते उहनू पुछिए भी तेरे संदूर दे अर्थ की ने, की अर्थ करेगी उह। कहिंदे ने संदूर केड़ा विटामिन देंदा है जी, कहिंदे ने संदूर दे इको अर्थ ने कि लंघन वाले बंदिया चेते रखी, जिदे केसां विच संदूर है एदे सिर दा साईं एदा पति, ए पति वरता खसम वाली है। ते सच जानी कहिंदा मेरे ककार मेरे केस कहिंदे ने मैं खसम वाला वा, ते मेरा खसम गुरु कलगी वाला है। संदूर दे की अर्थ करांगे? ध्यान दिया जे, साहब ने कहा पहली गल के केस साडी मोर ने, एक शब्द असी पढ़ने हां, वैसे तुसी स्याणे बैठे हो, नुक्ता चीनी नहीं मैं करनी। आम तौर ते शेर पढ़िया जांदा निशाने सिखी पंज हरफ काव, हरगिज ना बाशद ई पंज माप, कड़ा कार दो कच कंगा विदा, बिला कई थां ते बिला आया किते बिना आया, बिना केच खेच अस्त जुमला निशान। असि आम तौर ते कहने भाई नंद लाल दे रहतनामिया विच, देखो शब्द दे अर्थ जरूर सिखी अनुसार करिए, हकीकत ए जे भाई नंद लाल दी रचना विच किते भी नहीं आया। भाई नंद लाल ग्रंथावली पढ़ो, इस फारसी दे सिख विद्वान दे ए शब्द ने, ते शब्द बड़े भावपूर्त ने। ओ कहिंदा सिखी दी निशानी पंज काव तो शुरू हुंदी है, पंज काव आपां कक्का कहने ते शब्द काव वर्की है, कह लगे निशाने ए सिखी पंज हरूप काव, कई थावां ते शब्द हरफ आया है, पर आम तौर ते जदो उर्दू पढ़ने आ फारसी पढ़ने आ ते ओ शब्द हरफ नहीं वरतदे हरूप ही वरतदे। निशाने सिखी पंज हरफ काव, हरगिज ना पाशत ई पंज माप, कह लगे कड़ा कार दो कच कंगा विदा, तार चार शब्द कह हथा विच कड़ा गातरे कृपाण ते नाल शब्द वरते कशहरा ते प्यारिया नाल तेरे कंगा। हुण शब्द वरतने अखीर ते पता है कहिंदे ने बिना केच खेच अस्त जुमला निशान, कहिंदे ने भावे तेरे कोल चार निशानियां ने, कड़ा भी पाया कृपाण भी पाई कशहरा भी पाया है कंगा भी रखे है, पर चेते रखी जे केस नहीं तो पहलियां सारियां सारियां नफल निफल, केसा तो बिना संपूर्ण नहीं। बिना केस खेस अस जुमला निशान, केस जेड़े ने वो साडी मोर ने। कृपालू सतगुरु महाराज जी ने मेहर की, देखो फिर नाल एक शब्द उर गया। हुण जे असी कहीए भी कल्ले केस रख लै, ते साहब ने नाल तकीद की धरे केस पौल बिना भेखी मूड़ा सिख, मेरे दर्शन नाहे तिस पापी त्याग पिख। साहब कृपालू ने सब तो पहली दात दिती के रहत विच सिखा साबत सूरत के सानू तू रखी। असी कई बारी कहने के अमृत छक लो, कोई नहीं अमृत रख ली तू। ये शब्द मैं पिछले साल भी कहा सी ना कहिए, क्योंकि अमृत ने सानू रखना, असी अमृत नू नहीं रखना। अमृत ने सानू सिखी दा दान देना। हजूर ने कहा केस रखी, फिर अगली कृपा नाल कीती जिथे केसा विच कंगा रखे हैं, ते कंगा दिता सानू लकड़ दा, ते कंगा सानू बड़ियां गल्लां समझांदा है। मैं संखेप जर्त करदिआं, हुण ओही लकड़ दा टुकड़ा जिहड़ा पैरां विच रुलदा है, जदों नू आरे ते चीर के ओहदे दंदे बणांदे ने, जिन्हें अपने आप नू आरे दे समर्पित कीता है, सच जाणो ओह इक दिन सिर दा ताज बन जांदा है। ओह कंगा ओह लकड़ जिहड़ी पैरां विच रुलदी है ओह केसां दे विच आ गई, ते नाल शब्द कहे के सिखा दोनों वक्त तू कंगा करना। शब्द वरते के कंगा दोनों वक्त कर, पाग पाग चुने चुन बांध दई, के सिर ते उत्ते दोनों वक्त कंगा करी ते पग चुन के बनी टोपी दी तरह। नहीं ए नहीं के पांच छे पगां कठियां अज संडे वाले दिन बन लिया ते सोमवार नु एक टोपी रख ली मंगलवार नु दूजी रख ली, नहीं। शब्द वरते पाग चुने चुन बांध दई, दोनों वक्त कंगा करी, ते फिर कंगा तेनु एक गल समझांदा है, कुर्बानी करने वाले सिरां दा ताज मानदे नहीं। दो वक्त दा कंगा ते दो वक्त दा नितनेम दिता है। सिख दी बाहर दी रह तेनु अंदर नु प्रेर दीए, केसां विच कंगा करे, मुर्दा केस कंगे नाल बाहर आउंदे ने, सवेर दा कंगा करे ते शाम नु केस बाहर निकलदे ने, रात समे सवेरे कंगा करे ते मुर्दा केस बाहर निकलदे ने। दोनों वेले दे नित नेम दा मतलब ए वे
کہ اندر نو کنگا کری کہ جڑے پھرنے ماڑے اندر پیدا ہون بانی دا کنگا کر کے او بھی

तारे दुत्तर तारे तुद बिन अज ना बोलो कह लगे कीमत कौन करे तुद पावा देख दिखावे ढोलो कह लगे दूर न जाना अंतर माना हर का मैल पछाना नानक वह साखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन मन आओ इसे शब्द नु आपा अगे ले तुरने गल अमृत दी होनी आपो अपना ढंग है आपो अपनी गल करन दा तरीका है पर गल करन दा मकसद केवल कलाकारी नहीं गल करन दा पावे साडे कहण वालियां विच ते सुन वालियां दे हिरदे विच गुरु दा शब्द ते गुरु का अमृत टिक जाए। आओ करो कृपा साध संगत जी विचार आरंभ करन तो पहला आप एकाग्रता इसे तरह बख्श देखो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब धन गुरु नानक साहिब जी का तुखारी राग का यह वचन के वैसाख के महीने एक जीव इस्त्री जा एक जगयासु उस परमात्मा दे चरणा विच बेनती करदा है मालक जी वैसाख दे महीने विच रुखां दियां करूंबलां नवियां निकल आईयां ने उन्हां ने शिंगार कर लिया है पुरातनता नूं त्याग के मैं अपने तन ते शिंगार कैसा करां ते अपने घर दा दरवाजा खोल के तेरी इंतजार पे करनी आ कि तुसी दया दे घर विच आ के मेरे घर विच चरण पाओ। ध्यान दिया जे ब्रिजा ले जाना आपां अमृत वाले पासे पहलियां तुका सन के वैसाख भला साखा वेश करे तन देख है हर द्वार तन दा अर्थ जीव रूपी इस्त्री क्योंकि बाणी विच तन दा अर्थ दो तीन आए ने खास करके तन दा अर्थ हुंदा दौलत तन दा अर्थ हुंदा इस्त्री तन दा अर्थ कच्ची दौलत तन दा अर्थ नाम तन धन का अर्थ है धनता योग भी। मैं संखेप अर्ज कर जावा जब असि पढ़ने धन फिर ए ना आखी है वैन इकट्ठे हुए उसे धन का अर्थ है स्त्री जब असि पढ़ने काचा सन धन संचय मूल गावार उसे कच्चे जो धन शब्द आया उसे धन का अर्थ है दौलत जब असि पढ़ने ये धन नखुट ना नखुट है ना जाए ए धन अखुट नान खुट है ना जाए उथे धन दर थे नाम धन जदो असि हजूर दे बचन पढ़ने वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन धन धन गुर सोई उथे धन दा अर्थ धनता जो इथे शब्द है कि धन देखे हर द्वार एक जगयासु जीव अपने दरवाजे ते खलोती इंतजार पे कर दिए ते कहन लगे तन देख हर द्वार आओ कहे कर आओ प्यारे फिर दोबारा तुख शुरू हुंदी हे प्यारे जी तुसी मेरे घर विच आओ क्यों दुत्तर तारे जेड़ा दुष्टर संसार तरिया नहीं जांदा ए मेनू तार दियो ते नाल वचन कीता तुत बिन अड ना बोलो अड दा अखर अखरी अर्थ ते अद्धा नहीं अड दा अर्थ करांगे अद्धी कौडी शब्द है कहन लगे हे प्यारे तेरे तो बिना मेरी अद्धी कौडी भी कीमत नहीं। देखो हुण तुक नूं कदी पढ़ियो बाबे नानक दा तुखारी वैसे कदी समा मिलिया ना जिवें तुसी ऐदकी एकाग्रता नाल बड़े टिकाण नाल सुणे ते चित कीता भी इन्हां शब्दां नूं पढ़ के तुखारी बां बारां मां दी कथा होणी अत जरूरी। माज ते असीं पढ़ने आं तुखारी बारह मां नूं पढ़ो मैं कहना साडा पिछोकड़ साडे बार दे इलाके दा एक एक शब्द जिहड़ा है उह तुखारी बारह मां दे विचों निकलदा पिया। साहिब ने कहा तेरे तो बिना मेरी अद्धी कौटी भी कीमत नहीं। हुण जदों अगली तुक पढ़ने आ कहन लगे मेरे मालक जी कि तुद बिन अज ना मोलो कीमत कौन करे तुद भावा। हुण अगली तुक भावे मेरी अद्धी कौडी कीमत नहीं पर मेरे मालका जिधर तू मेरा हो गयो उदन दुनिया विच मेरी कोई कीमत पा ही नहीं सकता। पहली तुक विच क्या मेरी कीमत कोई नहीं तुद बिन अड ना मोलो कीमत कौन करे तुद पाहा जे तेनू पा जावा ते मेरी कोई नहीं कीमत पा सकदा देख दिखावे ढोलो। हुण ढोला शब्द बड़ा प्यारा है बाबा फरीद जी ने शब्द वरते है जदों असीं पढ़ने हां
کہ خط نہ لائے کسمبڑے جل جاسی۔

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए, राखो दास पाठ की लाज।

तिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै।

करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम काल खतोवे सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

प्रबंध का संत मानता हूं ते तमाम गुरमत हतेशियां नूं सद्दा दिता गया ते मैं इत्थों ये दो लफ्ज जो है इस वास्ते थानू याद करा रहे हैं कि कौन साथ दे रहा है, कौन आएगा, कौन आहदा नारा जो है मारदा है, भी जुलम होया है, तशद्दत होया है, अनर्थ होया है, अन्याय होया है बहुत वड्डा। और मैं थां थां ते बोल के आया कि साडे देश की सेना बंगलादेश 90,000 पाकिस्तानी सेना का आत्म समर्पण करा सकती है, ये को 50-60 सिर्फ बंदूकधारी जिन्हों के बारे मेरा ही झूठ बोलिया जा रहा है कि उन्होंने को भी सी ए भी सी ए भी सी। उन्होंने पकड़ने या मारने लिए अकाल तख्त के डाणा लाजमी से जरूरी से जागदा नीयत ही तैड़ी थी। मैं गालबन 2 साल पुरानी गल है, मैनू परिक्रमा किसी ने एक पुस्तक दिखी थी भेट बैज्ञानी जी भी मैं लिखी है तो तुम लो थानू भेटा, तो मैं उस पुस्तक न थोड़े जहां सफे पढ़ के चल रहा है। सुते सिद्ध मिल गए उदों जथेदार साधु सिंह जी पौरा हो सन आए सुभाव, तो मैनू कह लगे मस्किन जी अदब दे नाल चलो तुसी पुस्तक पढ़ के कभी सज्जे हो रहे खब्बे हो रहे हो, यह परिक्रमा है दरबार साहब की, पता नहीं ना पत्थरां दे थले कितनिया दे सिर पए ने, तुसी अदब दे नाल चलो किताब फिर कमरे च पढ़ लेना। मैं कहा चंगा जथेदार साहब तुसी एहसास करा दिता मैनू, वाकई मैनू अदब नाल चलना चाहिए क्योंकि एक एक सिल दे थले पता नहीं कितनिया दे सिर ने, अज किधरे वो जिंदा आंदे ते मैं उन्होंने कहना तुसी उदो मैनू कहा सी सिलां दे थले बठेरिया दे सिर ने, पर हुण ते सिलां दे उपर भी कईयां दे सिर पै गए, एक एक सिल पता नहीं कितने कितने सिरां दे नाल तामीर होई है बनी है। वाकई ये परिक्रमा महान है, इसका एक एक इंच महान है और इसका एक एक इंच पूजन योग है, सम्मान करण योग है, सजदा करण जो है योग है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनिया मेहरा वरतावन कला वरतावन ते सानू तारस बतावन, इतनी गल स्पष्ट है कमजोर नहीं आसी ते कमजोरी का एहसास भी अपने दिल चो कढ़ लेना, क्योंकि जिहड़ा कुदरती गल है तानहीन हुंदा है ना वह माणहीन हुंदा है, कुदरती नियम है रब्बी नियम है, जिथे तान नहीं ना उत्थे माण कादा, ते चारों पासे इस तरीके की दशा बनी है ते आवाजे ने ते कौम नितानी हो गई। तो मैं फिर अर्ज करा निताने नहीं आसी, क्योंकि निताना ते निमाना हुंदा है माण ते उत्थे जिथे तान है। सतगुरु की एक बड़ी कीमती पंक्ति, तान माण दीवान साचा नाम के प्रगटे, साडे कोल तान माण है केड़ा सच दा सच्चाई दा अपने गुरु दा साडे कोल तान है। एक गल वखरी है कि साडे देश दे आलम लोगां ने सियाणे ने तान कई तरह दे मन्ने ने, धन दा तान, तन दा तान, राजसी तान, रूहानी तान, मानसिक तान, बौद्धक बल, दिमागी तान, इस तरह के तान मन्ने ने, ते तान जैसा भी होवे माण मिल जाता है, माण की प्राप्ति हो जाती है। धन है कोलों चार कौड़ियां हैं लोकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, कहो को ना वड़ा माया वड़ियाई लोकी महिमा करन लग पेंदे ने, धन चूंकि अपने आप विच इक तान है इस वास्ते माण उसकी परिक्रमा करता है, तन का तान पहलवाना कोल हुंदा है ये भी अपने आप विच इक तान है तो सन्मान उसकी परिक्रमा करता है, राजसी तान एक मूर जिहा बंदा कुबड़ जिहा बंदा या मूर्ख जिहा बंदा सिंघासन ते बैठ गया कुर्सी ते बैठ गया तो हुण माण ते है उसकी प्रतिष्ठा उसकी जो है पूजा उसका जो है सन्मान, कुर्सी का सन्मान है, सता का सन्मान है। दिमागी तान कवि है दार्शनिक है फिलोसफर है अपने आप विच इक तान है तो माण ते होवेगा कुदरती गल है। तो मैं एक विचार थोड़े सामने

इच्छा नहीं है तो ग्रस्त प्रवृत्त होया जाए फर्ज की पूर्ति लई हो जाती। वो निरीक्षित ने मैं निरीक्षित हाँ इस वास्ते वो जती है मैं निराहारी हाँ मैं सारा दिन भोजन नू याद नहीं करता भजन करता भोजन मिल गया तो ठीक ना मिले तो ठीक मैं निराहारी हाँ। गल सखियां दी कुछ समझ च आई पर गुस्ताखी माफ बाद विच पैरोकार जो कृष्ण दे पैदा होए तो उन्होंने सोचा नच टप के कोई भगवान हो सकता है तो शायद नच टप के कोई भगत भी हो सकता है तो ब्राह्मणा ने तौर तरीके चलाए नचो टपो मंदिर नाच गाने दे अखाड़े बनता है। जे कृष्ण नाल सखियां दे नृत कर सकता है तो हुण मंदिरां विच देवदासियां चाहीदियां ने तो देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर। अज भी बहुत सारे मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बने हुए ने खास करके तमिलनाडु कर्नाटका ते आंध्रा थोड़ा जिहा महाराष्ट्र का हिस्सा आवाज उठ गई है प्रथा खत्म होनी चाहिए। मंदिर दुराचार दे अड्डे बन गए गंदगी दे अखाड़े बन गए और मंदिरों विच ये गंदगी हजारा साल तो देखी गई। रूहे जमीन विच इको एक हिंदुस्तान विच पावन पवित्र मंदिर सी और है हरिमंदर साहब उहदे नाल भी इन्होंने गंदगी जोड़न की कोशिश की थी। भई इत्थे नगन बीबियां मिलियां कौन दसे तुसीं नंगे हो तो बीबियां की नग्नता का जिक्र कर दे नंगे तो तुसीं हो हकीकत यह है असलीयत यह है सच्चाई तो यह है। इत्थे कोई देवदासियां की प्रथा नहीं है जिथे देवदासियां की प्रथा है यह सिलसिला उत्थे वेखो जाके और खुले रूप में मौजूद है। यह सिलसिला कोरनार के मंदिर देखो खजुराहे के मंदिर देखो चित्रां विच देख लो मूर्तियां विच देख लो इत्थे नहीं है। इत्थे ते केवल सिफ तो सलाह है हरी दी इस वास्ते हरी का मंदिर है। मैं फिर अर्ज करा इन्हू बहुता स्वर्ण मंदिर ते गोल्डन टैंपल ना आख्या करो हरी का मंदिर यह तो है ही हरी मंदिर। महाराजा रणजीत सिंह ने सोना लवाया तो तुसी स्वर्ण मंदिर आखो तो सोने का मंदिर सिर्फ सोने का मंदिर नहीं हरी का मंदिर है यह गुरु का मंदिर है पुराना नाम है हरी मंदिर। यह हरी का दरबार है दरबार साहब है निरा अपनी रसना के उत्ते इसनों गोल्डन टैंपल करके ना चढ़ाओ स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर ये कुछ सोने की महिमा नहीं ये तो हरी की महिमा है। कवि ग्वाल जब इत्थे आया ना कवि ग्वाल गुरु अर्जन देव जी महाराज का समकाली होया दर्शन करने तो बाद उस ग्वाल कवि ने जो हरिमंदर साहब के संबंध छंद लिखिया वो मैं तुहानू सरवण करावा। वो कहिंदा है राजे सुर ऊहां तो इहां साधु सुर राजे सदा सुदा है ऊहां तो इहां सुदा सर दर्श है। बैकुंठ ते दरबार साहब बैकुंठ ते हरिमंदर दोवां नू सामने रख के कंपेयर करता है मुकाबला करता है। कहिंदा है बैकुंठ दे च देवते विराजदे ने ते इह ऐसा है इत्थे सिर्फ देवते नहीं देवते भी ने ते साधु भी ने साधना करन वाले भी है ना ते ज्ञानवान भी हैगे ने। राजे सुर ऊहां तो इहां साधु सुर राजे सदा सुधा है ऊहां तो इहां सुधा सर दर्श है। सुने बैकुंठ दे च देवतियां कोल अमृत का कुंभ है ग्वाल कहन होवे पे इत्थे अमृत का सरोवर है तो ते कुंभ ही है ना। सुधा है हुआ तो इहां सुधा सर दर्श है पान किए वांके होत अमर सो मरुं के जीवन मुकत ये सबको बरस है। जड़ा बैकुंठ देच अमृत है ते कुंभ देच जड़ा पी लवे तो मरदा नहीं पर ए अमृत जो छक लवे मरण का भय नहीं रहता जीवन मुकत हो जाता है जीवन मुकत ये सबको परस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो अमृत जड़ा देवते आंदा है सिर्फ योगियां लिए त्यागियां लिए। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है ये योगियां लई भी है भोगियां लई। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो योग

क्योंकि बाहरों मैल लग गई, पर जे मत नू मैल लग जाए, जे विचारा नू मैल लग जाए, मनुख दे विचार मैले हो जाए, तां विचार तां बाहर नहीं अंदर रहिंदे ने।

0: क्योंकि विचार ही विचारों को पवित्र कर सकते हैं। पर जरूरी है छो दे, तन धोने लिए भी तो पानी की छो देनी पैंती है। जे आखी पानी का टब बाथरूम पिया रहे ते असी बेडरूम पै पै साफ हो जाइए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तन धोने लिए भी तो पानी के नेड़े होना पड़ेगा, पानी की लपेट में आना पड़ेगा, पानी की छो लेनी पड़ेगी। पानी की दूरी नाल तन साफ नहीं होता, बल्कि हजूर ने तो बाणी में एक थां ते फरमाया कहिंदे ने
1: तिखा तिहाया क्यों लड़े, तिखा तिहाया क्यों लड़े, जा सर पीतर पाल।
0: प्यासे दी प्यास नहीं बुझ सकती जे नदी दे ते प्यासे दे दरमियान विच कोई दीवार हो, उन्हूं पानी दा बुक भर के होठां राही मूंह राही अंदर निकलना पड़ेगा। प्यास तां बुझेगी, छो लेनी पड़ेगी। ते जे बाहरले पानी दी तन नूं जरूरत है छो लैण दी तां साफ हुंदा है, तां अंदरले विचारां नूं भी विचारां दी छो दी लोड़ है। इथों तक विचार पहुंचाने ने, विचार दूर पै रहे बाणी दे। शब्द की बाणी की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, गुरु दे पवित्र साफ सुथरे विचार। जे तेरे विचार मैले हो जान तो विचारां नूं विचार ही साफ कर सकते ने, पर एक शर्त ते भी गुरु दे विचार तेरे अंदर जाके तेरे विचारां नूं छोण। ऐसा ना होवे भी तू आखे गुरुद्वारे अखंड पाठ रखा दें, पैसे भेज दें, रुपए पहुंच जान, ग्रंथी सिंह गुरुद्वारे अखंड पाठ कर देवे ते तेरे विचार घर बैठे पवित्र हो जान।
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिहागड़े की वार दे चों अज पावन पवित्र हुक्मनामा आया है। ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਸਮਿਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, वार दी बाणी सिर्फ पौड़ियां दी बाणी है। सलोक बाद दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जोड़े ने। इस वार दे ते बहुत वड्डा सबूत मिल जांदा है। जे कह दईए सारी वार गुरु रामदास जी महाराज दी है, सलोक भी जैसे उपर हैडिंग है बिहागड़े की वार महला चौथा, तो हुण सारी वार गुरु रामदास जी दी नहीं क्योंकि थले आ जांदा श्लोक मल्ला तीजा, फिर आ जांदा श्लोक मल्ला पंजवां, अगे पंजवें मल्ले दे भी श्लोक ने इस वार दे च। तो गुरु रामदास जी महाराज तो पहले दे ते बाद दी पातशाहियां दे श्लोकां दा होना इस गल दा सबूत है कि वार शुद्ध रूप दे च सिर्फ पौड़ियां ही है। पौड़ियां दे नाल सलोक बाद दे च जोड़े गए ने। जैसे आसा दीवार इहदे च वी तुहानूं दूजे पातशाह दे सलोक मिलणगे, पहले पातशाह दे मिलणगे। मुख्तलिफ जितनियां वारां ने उहदे च कई कई पातशाहियां दे सलोक मिलणगे, पर वार असल दे जद पौड़ियां दे रूप विच आए तां उह इक पातशाह दी उचारण कीती हुई है। इस दीआं पौड़ियां सारी दीआं सारियां गुरु रामदास जी महाराज दियां उचारण कीतियां होईयां ने। जिहड़े जिहड़े सलोक वारां दियां पौड़ियां नाल सुमेल खा सकदे सन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जोड़ दिते, पर जिहड़े सलोक मेल नहीं खा सकदे सन उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अखीर दे च दर्ज कीता गया ते उस बाणी दा नां रख्या गया श्लोक वारां तो वधीक। इथों गल स्पष्ट हो गई भी ये वो सलोक ने जो वारां दे च नहीं समा सके, वारां दे चों बच गए। तो ये पहले पातशाह